0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार ये लोगों का फैसिनेशन विद किसिंग इन द स्टेयरकेस क्या है एग्जैक्टली? सो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, शी एंड आई वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है, उसकी मम्मी पापा पड़ोसी चाचा ताई कनाडा वाले लंदन वाले सबको पता है. तो शी इज़ लाइक, लेकिन हमें छुप छुप के स्टेयरकेस में किस करने में बड़े मज़े आते हैं रोशी. एंड आई एम लाइक, क्यों, ऐसा क्या है स्टेयरकेस में? क्या पीछे ऐसे तो मसाज पार्लर टाइप फील्स आ रही होती हैं? पाँव के नीचे क्या सॉफ्ट मसाज कैंडल्स वाली फील आ रही होती? कुछ नहीं, पीछे कॉन्क्रीट, नीचे कॉन्क्रीट. सो व्हाट्स द गुड फन इन किसिंग समवन इन अ स्टेयरकेस? एंड शी सेड, यार आसपास जब कोई आपको सडनली पकड़ ले किस करते हुए, वो वाला डर ना और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देता है चीज़ों को. सो आई हैव रियलाइज कि प्यार में एक इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ये भी होता है कि आप छुप छुप के प्यार करो, छुप छुप के किस करो, उसमें बड़ा ही मैग्नीट्यूड वाले फन आता है. अगर आप भी मेरी बेस्टी की तरह फुल ब्लोन रिलेशनशिप में हो, शादी होने वाली है आपकी टुमारो, लेकिन आज भी आप छुप छुप के स्टेयर केस में किस कर रहे हो, देन वी नीड टू टोटली हैव अ कॉन्वो अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज। The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जूते पड़ने वाले हैं ना, यू वोंट नो वेयर टू गो.
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: व्हिच इज व्हाई अगर आपके पास कोई कन्फेशन है तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. एंड फॉर दिस मोमेंट मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. काफी दुख के सताए हुए प्राणी है ये. हेलो दुख के सताए हुए मिस्ट्री कॉलर प्राणी.
2: हाय रोशी. हाय.
0: हाय मिस्ट्री कॉलर. आपके आवाज सुन के और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे हाय की जगह हाय हाय कहने का मन कर रहा है.
2: मुझे भी बहुत ज्यादा. अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मुझे शेयर करना है आपके साथ. मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो सॉल्यूशन चाहिए मुझे.
0: बोलना.
2: अभी 2-3 महीने पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब अब वो एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ उसने चीट करा है. तो वो अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई थी. तो वहाँ पे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साइड में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सनी था. तो उसके साथ उसने फिजिकल हुई, वो चीट करा और मुझे पता चल गया. वो उसने, मैंने सारी चैट्स पढ़ी और उसने मेरे को है ना मेरे फोन में हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट्स कर रखा था लॉगिन. तो मैंने वहां से सारी उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा. तो तब मुझे पता चला उन सबके बीच में, मतलब जो कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में. तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था.
0: How did you feel? मतलब इमेजिन करना randomly notification आ रहा है आपके फोन पे, आपको लग रहा है कि ये मेरा गूगल हैंगआउट का नोटिफिकेशन है. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज लाइक योर गर्लफ्रेंड इज सेइंग आई लव यू बट नॉट टू यू बट टू सनी भाई साहब.
2: उससे पहले मुझे भी लगा था कि वो मुझको प्यार करते, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब उसने चीट किया तो ये सब झूठ था.
0: तो ठीक है मिस्ट्री कॉलर.
2: हाँ मतलब थोड़ा सा.
0: डू यू थिंक इफ आई रोशिफाई यू यू विल फील थोड़ा सा बेटर?
2: या
0: इतना क्यूट है ये, ले यार.
3: You've been roshified.
0: और रोशिफिकेशन के साथ साथ दो किसेस भी ले ले, मुफ्त मुफ्त मुफ्त. अब कैसा लग रहा है?
2: अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे.
0: ये बहुत सही है. मतलब अभी इतनी दुखियारी आवाज थी तेरी और अब कह रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. बट आई होप दैट योर नेक्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली डज राइट बाय यू बिकॉज यू साउंड लाइक सच अ नाइस गाय. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई बहुत ही अमेजिंग हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है थैंक्स टू सोशल मीडिया, डू सीरियसली हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: So you're totally in love with your cousin, और इसीलिए आप बार बार अपनी मासी के घर जाते रहते हो, but किसी को ये पता चल गया ना, इतने

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
6: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
7: Jai Gurudev. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: हुई।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची का।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Please don't judge me by the movies that I watch because कभी कभी मैं मजबूर हो जाती हूँ अपने अंदर की आंटी के हाथों कि मैं बहुत ही psychotically crazy फिल्म देखूँ, जैसे कि मैंने recently देखी जुदाई, जिसमें उर्मिला मटोंडकर एक यंग एंड हैपनिंग करोड़पति होती है जिसे शादीशुदा अनिल कपूर से प्यार हो जाता है, तो वो अनिल कपूर की वाइफ यानी कि श्रीदेवी से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पति को खरीद लेती हूँ, और इंस्टेड ऑफ श्रीदेवी लूजिंग द प्लॉट एंड सेइंग कि भाई तेरा दिमाग खराब है, अपना रास्ता नापे और अपने दिमाग का इलाज कराएं, AKA लोबोटमी, शी टेल्स उर्मिला कि कितने में खरीदेगी मेरा पति। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए कोई आपके पति को या बॉयफ्रेंड को खरीदना चाहता है, किस प्राइस पर आपका ईमान डोल जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ ठीक है ले लो इसको, आप दो 10 करोड़ या 12 करोड़ या एक बंगला इन्वेस्टमेंट जो भी है, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नो ऑफेंस टू योर पार्टनर्स, बट एट व्हाट प्राइस वुड यू सेल योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड लाइक श्रीदेवी डिड टू उर्मिला इन जुदाई। और ये आइडिया देखो बिल्कुल मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ पिक्चर देखी और आपसे सवाल पूछ रही हूँ जिसका जवाब आप मुझे इंस्टा या FB पर दे सकते हो। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochIE, सो हिट मी अप बेबी विद दिस रियली हाइपोथेटिकल आंसर, एंड व्हाटएवर यू डू कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोशी थ्योरी नंबर 428 एंड चांसेस हैं कि इस थ्योरी को एक्चुअली बैकअप किया जा चुका है विद रिसर्च. आई डोंट नो, आई हैवंट इवन बॉदर टू चेक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इफ यू आर विद समबडी जो एक बहुत अच्छा किसर है देन चांसेस हैं कि उसके बाद के जितने भी बेसिस हैं गेटिंग नॉटी इज गोइंग टू बी सुपर फन. लेकिन अगर इंसान किसर ही बुरा है तो उसके बाद आपकी किस्मत इन द रोमांस सेक्शन काफ़ी ख़राब होने वाली है. मैंने ऐसे कई रिस्क लिए अपनी ज़िंदगी में वेयर आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है बंदा ख़राब किसर है बट आई एम श्योर ही बी अ ग्रेट लवर इवेंचुअली. बट ऐसा नहीं हुआ मुन्ना. और अगर मौसी जी आपके साथ इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है, यू एंडेड अप विद अ बैड किसर बट फाउंड अ ग्रेट लवर, देन दुनिया के शायद आप वो 1.5% के लोग हो जिनके साथ ये अच्छी किस्मत की बातें हुई हैं. और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड वाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: या फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट।

आप सीरियसली अपनी वर्गो गर्लफ्रेंड को बहुत चार्म करना चाहते हो ना, आप चाहते हो दैट शी लुक्स एट यू एंड लुक्स एट योर सराउंडिंग्स, आपके घर में वो पहली बार आई है एंड शी फील्स टोटली टर्न्ड ऑन. इसके लिए आपको एक बहुत ही इंटेग्रल, इम्पॉर्टेंट और फिनेस वाला काम करना है, और वो काम है घर की सफाई. ट्रस्ट मी, अगर एक वर्गो लड़की है या लड़का है, द वन थिंग दे विल वॉच आउट फॉर इज आप दिन में कितनी बार नहाते हो, आप दांत कितनी बार ब्रश करते हो, आपके मुंह से बैड ओडर तो नहीं आ रही है, और आपका घर साफ है या नहीं. अगर उन्हें आसपास आपके सॉक्स ऐसे गिरे पड़े मिले, या फिर खाने के थोड़े थोड़े पिज्जा के स्लाइसेस या ड्रॉर के आसपास गिरे हुए पड़े, ट्रस्ट मी दैट पर्सन विल डंप यू राइट देयर, अगर वो एक ट्रू ब्लू वर्गो है. सो द ट्रिक टू रियली नेलिंग द रोमांस गेम विद द वर्गो इज सिंपल. साफ सुथरे हो जाओ, दो की जगह चार तौलियों का इस्तेमाल कर लो, अपनी टी शर्ट को ब्रांड न्यू बनाकर पहनो एंड दे विल लव यू फॉर इट. आई मीन रियली ऑल यू नीड इज साबुन एंड टूथब्रश. व्हाट अमेजिंग प्रॉप्स फॉर अमेजिंग रोमांस विद अ वर्गो. इसे सीरियसली लेजिट ट्राई करके देखो, यू विल लव इट, यू विल लव हाउ सक्सेसफुल इट इज. और उसके बाद मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और जोडियक साइन है, You guessed it, Virgo. On that note, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: This is my personal tribute to all you guys out there who are dating women who are completely crazy. Okay, so एक तरह की औरतें होती हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वो हैं, सबसे इंटेलिजेंट वो हैं, सबसे स्मार्ट वो हैं. It's another thing कि इनमें से तीनों वर्च्यूज में से उनके पास एक भी नहीं होता. That's not the point, क्योंकि उनके डेलुलू का क्या ही सलुलू है. They will walk around everywhere looking as if बस दीपिका पादुकोण के बाद अगर कोई हॉट एंड हैपनिंग है तो वो वही है. एंड द पुअर मैन हैव टू इंड्योर वुमेन लाइक दिस. जो चलती ऐसे हैं तो लगता है कि भाई बतख चल रहा है, जो बात करती तो ऐसे लगता है कि डड्डू बात कर रहा है, लेकिन इनके दिमाग में इनको लग रहा है कि मिस इंडिया का पैजेंट अगले साल हम ही जीतेंगे बबुआ. और अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा एक इंसान हमारे ऑफिस में भी है. इतनी क्रिंज फीलिंग आती है ना उससे बात करके, बिकॉज यू आर लाइक यार बेब तो सही बंदी होती अगर तू थोड़ा डिलुलू से हट जाती, बट वो उसे हो नहीं पा रहा है. तो अगर आप भी ऐसे एक रिलेशनशिप में हो वेर यू आर डेटिंग समवन हू इज कम्प्लीटली डिलूजनल अबाउट लाइक हर ऑसमनेस एंड शी इज़ नॉट, बट आपको उस पर इतनी दया आती है कि आप ब्रेकअप नहीं कर पा रहे, मेरी तो सिंपथीज ऑलरेडी आपके साथ हैं. अपना नंबर भेजो, अभी फ़ोन करूँगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड क्लियरली I'm terribly offended right now. On that note, hit me up on the Gram या Facebook and whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: So you're totally in love with your cousin और इसीलिए आप बार बार अपनी मासी के घर जाते रहते हो, बट किसी को ये पता चल गया ना, इतने जूते पड़ने वाले हैं ना, you won't know where to go.
2: The secret box.
1: Which is why, अगर आपके पास कोई confession है तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. And for this moment, मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. काफी दुख के सताए हुए प्राणी है ये. हेलो दुख के सताए हुए मिस्ट्री कॉलर प्राणी.
3: हाय रोशी. हाय.
1: हाय मिस्ट्री कॉलर. आपके आवाज सुन के और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे हाय की जगह हाय हाय कहने का मन कर रहा है.
3: मुझे भी बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मुझे शेयर करना है आपके साथ. मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो सॉल्यूशन चाहिए मुझे.
1: बोलना.
3: अभी 2-3 महीने पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब अब वो एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ उसने चीट करा है. तो वो अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ पे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साइड में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सनी था. तो उसके साथ उसने फिजिकल हुई, वो चीट करा और मुझे पता चल गया. वो उसने, मैंने सारी चैट्स पढ़ी और उसने मेरे को है ना मेरे फोन में हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट्स कर रखा था लॉगिन. तो मैंने वहां से सारी उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा. तो तब मुझे पता चला उन सबके बीच में, मतलब जो कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में. तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था.
1: How did you feel? मतलब इमेजिन करना, randomly notification आ रहा है आपके फोन पे, आपको लग रहा है कि ये मेरा Google Hangout का notification है, and the next thing you know is like your girlfriend is saying I love you but not to you but to Sunny Pai साहब.
3: उससे पहले मुझे भी लगा था कि वो मुझको प्यार करके, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब उसने चीट किया तो ये सब झूठ था.
1: तो ठीक है मिस्ट्री कॉलर.
3: हाँ मतलब थोड़ा सा.
1: Do you think if I roshify you, you'll feel थोड़ा सा better?
3: या
1: इतना क्यूट है ये, ले यार.

0: सारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। Visit viranijewelers.com.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, कबड़क कबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है आपके साथ दैट यू लव समवन अ होल बंच और फिर किसी रीजन से आप दोनों इकट्ठे नहीं हो एंड व्हेन दैट ब्रेकअप हैपेंस आपको ऐसे लगता है दैट समवन हैज लिटरली पंच्ड यू इन द गट. अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है ना देन लेट मी टेल यू दिस, डॉक्टर्स कहते हैं कि द फीलिंग ऑफ पेन जो आपको इमोशनली फील होती है ब्रेकअप के टाइम वो एक्चुअली फिजिकली भी फील होती है. सो दैट फीलिंग वो जो किसी ने मुक्का मार दिया इज अ रियल थिंग. और अगर आपकी जिंदगी में किसी ने पंच इन द गट कर दिया है बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन, आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज राइट अबाउट इट. पता है क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने फीलिंग्स को लिखते हो ना, यू कैन नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बेटर बट समहाउ ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स आपको ट्रैप नहीं कर रही हैं, कि अपने ही ख्यालों में चक्रव्यूह में फंस के आप मर नहीं जाओगे घुट घुट के. देर माइट बी अ वे आउट, आई डोंट नो. बट अगर आपको अभी एज

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो ज़रा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट रेडियो मिर्ची।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया।

पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ओवर साइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल, लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जा कर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उन पर बहुत खूबसूरत सूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाय, मैं हूँ श्रेया। तुम्हें बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वाज टेलिंग मी कि डिम्पल कपाटिया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडिल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: Tera kya hoga kalya?
7: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi. It's hot.
0: Aap sun rahe hain purani jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है।

श्रेया जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीनत अमन ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीनत अमन ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरे सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, श्रेया के पास होंगे, सो कम राइट बैक।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। सो आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

बैंग्स कह लो, फ्रिंज कह लो, ये सब लाने वाली थी साधना जी पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स जो उस जमाने की हीरोइंस लाई और हमने इस जमाने तक आज तक हम उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं। इनका माथा बहुत चौड़ा था तो एक्चुअली में डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा था कि ये ना अपने माथे को ढकने के लिए कुछ आगे के बाल कटवा लें, और साधना जी ने जब ये किया तो उनकी स्टाइल इतनी फेमस हुई कि कॉलेज की हर लड़की उस समय बैंग्स, तब ये बैंग्स नहीं कहे जाते थे, इनको साधना हेयर कट कहा गया था जो आज भी इस नाम से चलता है। कभी कभी हम इन्हें बैंग्स कह देते कॉलेज की हर लड़की। हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, फोरहेड पे थोड़े से बाल कटवा करके साधना कट ही लेके घूमती थी। पुरानी जीन्स पे आज उस जमाने की फैशन की बातें हो रही है तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची
4: Grand Finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet

0: at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे अच्छा एक बात बताऊं आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते बता नहीं पाते हो जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है वो जैसे ही गायब होता है तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स मैं हूँ श्रेया गुड नाइट

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार सामने वाला ठीक हो जाए इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। गलती शायद आपकी हो भी नहीं, लेकिन आप बोलते हैं यार वो तो नहीं सॉरी बोलेगा, मैं जानता हूँ उसको, मैं ही सॉरी बोल के खत्म करता हूँ ताकि बातचीत तो शुरू हो। तो ये आप कहने सही नहीं है।
4: नहीं, वो सही है क्योंकि आपकी स्थिति तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। वो तो ठीक है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है एंड नाउ आप जाकर के सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। आपको लगता है अगर आप थोड़ा सा बेंड हो गए उसके मन का वेस्ट फुल स्टॉप लग जाएगा एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। चाहे वो घर में कोई रिश्ता है, चाहे वो टीम में कोई बात है, और फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो जो भी आपको बात उनको कहनी है या समझानी है आप समझा सकते हैं, दैट इज ओके। यहाँ आप बिल्कुल ठीक है, आपके मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग जब आप बहुत दर्द में है, आप बहुत दर्द में हैं, आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट हैं।
3: अच्छा, हाँ, अच्छा, समझ गया मैं।
4: कई बार ऐसे रिश्ते भी होते हैं ना, यू सी यंग पीपल ऑल्सो, वो फिर एडवांटेज ले लेंगे आपका। आपको क्या लगता है जब तक वो मेरे से बात नहीं करता मुझे ठीक नहीं लगता, देन दे कैन एक्सप्लॉइट यू ना।
3: बिल्कुल,
4: आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप फिर सारा दिन सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि वो ठीक हो जाएं। So you will feel good. That means you are emotionally
3: dependent
4: on them. That is not a good thing.
3: तो वो दूसरे का ईगो है कि आप जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जब तक ये छोटे वाले सॉरी हमसे ना बोले हमारी जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन ये दर्द में रहेगा।
4: हो सकता है कभी कभी आजकल लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं,
3: तो वो कंट्रोल का ही एक और फैसेट हुआ।
4: का एक और फैसेट है। इसलिए हमें अपनी स्थिति की जिम्मेवारी खुद उठानी होती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला, अगर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि सामने वाला क्या बोल रहा हूं, मैं अपने मन में गीत गा रहा हूं, मैं अपने पे विचार पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो सामने वाला कभी कभी चिड़के भी कह सकता तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलता हूँ, तब क्या किया जाए?
2: अभी वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात लेकिन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस। वो जब अपनी बहुत अपसेट होते हैं तो वो हमें इंसल्ट करके या क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम प्रोवोक हो जाते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो

0: जाती है
1: जी।
0: और अगर वो हमें नहीं कंट्रोल कर पाते
1: हाँ।
0: अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, इट इज नॉट दैट आई डोंट वांट टू चेंज, इट इज जस्ट कि अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती, वो मेरे मन की मास्टरी है, वो मेरा एफर्ट है, आई चूज टू स्टे काम। और ये हर फील्ड में होता है, आज क्रिकेट के फील्ड में कोई स्लेजिंग कर रहा है, आज ऑफिस में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आज कहीं पर कोई बॉस डांट रहा है, तो हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेंगे ना। अगर हम वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब ही होते रहेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब जब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रोवोक नहीं कर पाते तो आप और अपसेट होते हैं, पर ये तो इमोशनली वीक हुआ ना, सामने वाला इमोशनली वीक हुआ, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है।
1: तो ये सोचने की सामने वाला इमोशनली वीक है, वो बेचारा मन से बीमार है, और उसके प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट भेजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए।
0: पहले अपने को उसकी एनर्जी से डिटैच करना जरूरी है। हम किसी की हेल्प तब कर सकते हैं
1: जब हम स्ट्रॉन्ग हैं।
0: और कोई भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बात करता है, वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब पोजीशन के पावर में बड़ा हो सकता है पर इनर पावर में वो बहुत
1: वीक है।
0: सोल पावर में वो बहुत वीक है, नहीं तो वो बहुत काम से, डिग्निटी से, ग्रेस से बात करेगा। बात करें, बात ना करें ऐसा नहीं है, जो कहना है कहें, लेकिन ग्रेस डिग्निटी जरूरी है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने जीवन के प्रिंसिपल्स हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ही बनाना चाहिए। आइए इस बात को और गहराई से

0: समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: हम जो बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, कई बार होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा बोला जाता था कि तुम सॉरी बोलो, तुम बड़े हो। मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ, तो हमारे पापा मम्मी भाई बहन जो कजन्स आंटी मासी मामा चाचा चाची हमेशा ये सिखा के गए कि बड़ों को हमेशा झुकना जरूरी होता है, क्योंकि सही पाथ तो तुम ही दिखाओगे, पथ जो है वो तुम्हें दिखाना है। और उस समय भी बड़ा मुझे परेशानी होती थी कि हर बार सॉरी मैं ही क्यों बोलूं, कभी कभी गलती नहीं होती थी, बच्चे थे हम समझते नहीं थे। अब वो बात दिमाग में कहीं ना कहीं छप गई, तो मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, ऑफिस में भी कभी कोई होता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ कि यार तुम बड़े हो सॉरी बोल दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो कभी कभी मुझे भी सुनने को मिलता है मैं ही हमेशा क्यों बोलूं, गलती आप उसको कुछ नहीं बोलते, तो इसका क्या निवारण है?
3: हमारे जो वाइज लोग होते थे वो हमेशा कहते थे कौन सा पेड़ झुकता है,
2: जो बड़ा होता है, जो ऊंचा होता है, जो फलों से लदा होता है। हाँ,
3: मना झुकना भले हमारे अभी कमजोरी समझी जाए, पर झुकना एक्चुअली कमजोरी नहीं होती।
2: लेकिन इसको समझा क्यों जाता है?
3: आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कर नहीं पाते कोई चीज तो आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो कि ये गलत है। ये कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इस समय सोसाइटी में, चाहे इस ईंट का जवाब पत्थर से है, अगर कोई कहेगा प्यार से दो तो उसको भी कमजोर समझा जाता
2: बिल्कुल,
3: है
2: बिल्कुल।
3: कोई सच बोलता है हमेशा उसको भी कमजोर समझा जाता है
2: बिल्कुल।
3: कोई झुक जाता है उसको भी कमजोर समझा जाता है,
2: सॉरी बोलता है वो भी कमजोर है।
3: ये कोई एक चीज नहीं है, एंड दैट इज वाई समटाइम्स आपको अपने जीवन के प्रिंसिपल्स अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करने होते हैं। कभी कभी हमें वो चीज करके कम्फर्टेबल भी लग रहा होता है, पीसफुल भी फील हो रहा होता है, रिश्ते भी ठीक हो रहे होते हैं, हम आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन केवल वो सुन सुन करके हम कहते हैं नहीं, शायद सब कहते हैं ना कि तो ये कमजोरी है तो गलत होगा। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो गलत है कि नहीं? कहते तो ये है कि जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है, और जो वो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है तो तूफान आता है तो सबसे पहले वो ही गिरता है।
2: बिल्कुल,
3: झुकने का मतलब देखो दो प्रकार होते हैं, सबमिसिव एटीट्यूड वो वाला झुकना नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: कई बार कई चीजें राइट होती नहीं है पर उसको वो टैगलाइन दे दिया जाता है। तो हम कोई झुकने का वो मतलब नहीं है कि कोई हमें ग्रांटेड ले रहा है या सबमिसिव एटीट्यूड है। यहाँ झुकने का मतलब सिर्फ इतना है लेट गो करना। हो गया ना? जैसे आपने कहा कि अभी तो मदर चली गई, अब तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही।
2: बिल्कुल,
3: तो अब आपको कितना उस चीज को रिग्रेट होता है। बहुत लोगों को रिग्रेट होता है कि क्या फायदा हुआ, वो चार दिन हमने जो खराब कर दिए वो क्या फायदा हुआ। एंड इसीलिए हर रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट रिफ्लेक्ट कर ले, न दुख देना है न दुख लेना है।
2: बहुत बढ़िया,
3: देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। और अगर गलती से दे दिया है, आपने दे दिया है, द ओनली थिंग इज जस्ट अपोलोजाइज। आपका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, उनका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। करके देखे, वे डूइंग इट फॉर आवर पीस ऑफ माइंड।
2: बहुत बढ़िया,
3: वे डूइंग बिकॉज आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप।
2: यस,
3: आई एम नॉट डूइंग टू प्रूव इट टू एनीबॉडी।
2: बहुत बढ़िया,
3: राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है, आई फील गुड।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है, पल्लव है, वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पल्लव है, मैं अहमदाबाद से हूँ, और कल मैं अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रहा था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस वजह से वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्लाने लगे, तो मैं क्या करूँ? ये एंगर मैनेजमेंट का किस्सा लग रहा है।
3: कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाता है, भले हमारा इंटेंशन नहीं भी है, थोड़ा समय उन्हें ठंडा होने दे। बिकॉज अगर आप गर्म तवे पर भी अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो उछलता है. तो कभी कभी जब सामने वाला बहुत नाराज है, अपसेट है और हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए भी मन थोड़ा शांत चाहिए.
2: बिल्कुल.
3: सो एक दिन दो दिन का गैप डालें, और अगर उस बीच में गैप तो डालना है, द गैप इज टाइम का गैप तो डालना है, लेकिन उस टाइम के गैप में एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना. जितना समय हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, मन में जरूर बात कर रहे होते हैं.
2: हाँ, बिल्कुल.
3: और वो जो मन में बात कर रहे होते हैं, वो कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव हो जाती है.
2: उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या जरूरत है, हर बार वो चिल्लाते हैं, जस्ट बिकॉज इज अ बॉस, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना है.
3: छोटी छोटी बातों में कैसे अपसेट हो जाते हैं, इतनी जोर के चिल्लाने की क्या बात थी, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर इतने सेंसिटिव है, इतने दिन हर्ट रहते हैं, ये चलता रहता है चलता रहता है. ये गर्म तवे को और गर्म करने जैसा है. क्योंकि आपका वाइब्रेशन तो उन तक जाएगा ना. इसीलिए अगर इफ यू रियली केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके थॉट्स और वाइब्रेशन हील करते हैं. ये चीज हमें समझनी है कि हीलिंग थॉट्स और वाइब्रेशन से होती है. जैसे हम किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, तो हमें सुकून अनुभव होता है कि नहीं, तो वहाँ का वाइब्रेशन ही तो सुकून दे रहा होता है. वो वाइब्रेशन वहाँ के आने वाले लोगों ने ही तो बनाया होता है. सब आते हैं, कोई वहाँ पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है. अब वो जो व्यक्ति थोड़े से दर्द में है, व्हेन आई थिंक नाइस अबाउट देम, हम उनकी जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, जब भी उनकी स्मृति आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम, अगर हम अच्छा सोचते हैं, वो जल्दी हील होंगे. और हीलिंग होने के बाद ही, हीलिंग मना जब आपको लगता है थोड़े से नॉर्मल हो गए, तवा ठंडा हो गया है, तब जरूर बात करनी चाहिए. कभी कभी हम बात नहीं करते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग गांठ रह जाती है. तो वो गांठ को सुलझाना भी जरूरी है. तो अपनी बात कहकर के उसको जल्दी ठीक करने में ही अच्छा है.
2: जी, जगजीत सिंह की बहुत प्यारी गजल है, उसमें वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है. तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, तो थोड़ा समय देना जरूरी है.
3: इसमें दो बातें हैं. एक बात ये जो आपने कही वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है. गांठ हो तो उसको खोल लेना चाहिए. कभी कभी अगर रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पता ही होता है कि ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये ईगो के कारण हुआ, कुछ है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उस गांठ को सुलझाने के जगह उस गांठ को तोड़ के फेंकने में अच्छा है.
2: भूल जाओ उसके बारे में,
3: क्योंकि वो कुछ नहीं था, वो एक ईगो क्लैश था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं था. वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत समझा, एक्चुअली हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है. तो उस समय किसी कारण से हमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, बट देन अगर अब हम फिर बैठेंगे ना उसको
2: सोचने के बारे में,
3: गांठ खोलने के लिए, तो कई बार वो राई का
2: और उलझ जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है. बिल्कुल सही कह रही.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Kornmuller, Mutze der Hubeiger. Kornmuller, Kornmuller.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्यार की वाइब्रेशन किसी को हील भी कर सकती है क्योंकि प्यार हमारा नेचुरल नेचर है। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और कभी कभी मैंने देखा है कि ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अपने पिताजी से ये बात सीखी है कि कितना भी कुछ हो जाए वो फोन हमेशा करते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो सॉरी बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा फोन करते हैं। हम लोग शायद चूक जाते हैं कि कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई बात पे अनबन हो जाती है तो हम फोन नहीं करते, पापा हमेशा फोन करते हैं और कैसे हो, सब ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, एक्सेट्रा। तो मैंने देखा है अब मेरे साथ वो मन शांत होता है, तो जब पापा झुक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं झुक सकता।
4: ये आपने बहुत सुंदर बात कही। हमारे कल्चर में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको सॉरी बोलना है, आई लव यू बोलना है, ये सब नहीं था।
3: वो अनसेड है।
4: सॉरी का मतलब क्या होता था, जैसे उन्होंने कॉल किया और बात करना शुरू कर दिया तो वो एक तरीका है कहने का कि भाई मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा है,
3: हाँ, मैंने छोड़ दिया, तुम
4: मेरी
3: भी छोड़
4: तरफ
3: दो।
4: से सब कुछ ठीक है। इट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट। हमें भी कोई जा करके किसी को सॉरी नहीं कहना होता,
3: बिल्कुल
4: बात करना शुरू कर दो, विच इज जस्ट टेलिंग अनदर पर्सन भाई आपको जब छोड़ना हो छोड़ देना, मैंने तो छोड़ दिया, मेरी तरफ
3: छोड़
4: से
3: दिया,
4: कुछ भी पकड़ा
3: और उससे ज्यादा वो मुझे क्या बोल रहे हैं बिना बोले कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत जरूरी है तो मैं तो कुछ पकड़ के नहीं रख रहा हूँ, और वो साइलेंटली ये भी कह रहे हैं कि तुम भी मत पकड़ के रखो।
4: वो एक्चुअली क्या होता है, जब सामने वाला आपसे बात करना शुरू करता है तो वहाँ से प्यार की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो आपने अभी पकड़ के रखा हुआ था, आपने अपनी जो लव की एनर्जी उसको ब्लॉक कर दिया था, उसके आगे एक दीवार बना दी थी। एक्चुअली हमारी जो नेचुरल नेचर है ना वो लव है। लव कंफर्टेबल है हमारे लिए, वो प्योर एनर्जी को रेडिएट करना वो बहुत कंफर्टेबल है। हम कभी कभी उसके आगे दीवार डाल देते हैं, मतलब मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, उसने मुझे इग्नोर किया था। अब जब हम ये करते हैं ना, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम उन्होंने SMS बताया है, पूरा नाम नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि ओल्ड एज में रिटायरमेंट हो गए मेरे, लेकिन सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं वो स्लोली अब डिसकनेक्ट हो रहे हैं, या वो मुझसे हो रहे हैं या मैं उनसे हो रहा हूँ, वो उन्होंने नहीं लिखा है। अब क्या करूँ, प्लीज एडवाइस।
2: आपका क्वेश्चन सुन करके मुझे कल ही मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी, न्यूज़ में थी शायद, कि एक व्यक्ति था मना जो थक करके बस में जा रहा था, और फिर एक ओल्ड मैन आया तो उसने अपनी सीट उनको दे दी क्योंकि बुजुर्ग सा था। और वो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि जैसे बहुत थका हुआ था, दिल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी बुजुर्ग को देखा तो सीट दे दी और फिर हल्की सी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने उसको पूछा कि आप कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं, यानी फेल्ट कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था बहुत काम था, काइंड था। थोड़ी बातचीत होती रही, उसके बाद स्टॉप आ गया उस बुजुर्ग व्यक्ति का उतरने का, और फिर उसने कहा आई रियली नीडेड टू टॉक, मैंने 4 दिन से किसी से बात नहीं करी थी, मुझे

0: सच में किसी से बात करने की जरूरत थी. एंड ही वाज शेयरिंग कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट कैसे किसी के जीवन में थोड़ी सी लाइट लेकर के आ जाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और वो बहुत टायर्ड था, लेकिन छोटा सा एक कर्म हेल्प का, छोटा सा कर्म एक काइंडनेस का, ही फेल्ट दैट द डे मेंट समथिंग टू हिम. जो वो इतना ऑर्डिनरी दिन था उसका कुछ मीनिंग हो गया. तो हमारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, ऑल ऑफ अस हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़ा थोड़ा उनसे बातचीत करें. दिस इज़ फॉर द यंग जनरेशन. आप पार्क में जाते हैं, आप कभी उनसे मिलते हैं, हम कई बार उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. इनफैक्ट हमें लगता है ये क्या हमें इतना चिपकते रहते हैं, ये क्यों हमसे इतनी बात करते रहते हैं. बट दे रियली आर लुकिंग फॉर सम कंपनी. बच्चे बिजी हैं, जॉब पर जाते हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है. सो दिस इज एक हम कोशिश कर सकते हैं. एक स्माइल, एक मिनट की बातचीत उनको कंफर्ट देता है. एंड सेकेंडली जो है बुजुर्ग में, वो इतने डिसहार्टन नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो. वो भी भारत में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं बातचीत करने की. कोई गार्डन है, कोई पार्क है, कोई कंपनी है, अकेले नहीं बैठे. नेगेटिव साइकिल चलना शुरू हो जाता है. आपको कोई सत्संग अच्छा लगता है वहां जाएं, वो भी नहीं अच्छा लगता है. तो कोई फ्रेंड्स के साथ किसी ग्रुप में जाएं, बातचीत करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकाल करके बातचीत करें तो अच्छा लगेगा.
1: बहुत खूबसूरत.
0: नहीं तो अगर कोई ऐसी हॉबी है जो छूट गई है पीछे,
1: उसको शुरू करें.
0: हाँ, हम ये नहीं, सी एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो. समटाइम्स इट इज इन द माइंड मोर देन द बॉडी. अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता. मे बी आप उतनी स्पीड पे नहीं कर सकते, मे बी आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं. वी आर ट्राइंग क्योंकि एक तो वो प्रोडक्टिव होती है, मन को थोड़ा बिजी रखती है, वो हमें खुशी देती है. इट कुड बी जस्ट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग थोड़े समय के लिए जो मुझे अच्छा लगता है.
1: बहुत खूबसूरत.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: It's 7:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
7: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
8: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
7: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
8: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों हो जाता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जब बोला मेरे दिमाग में, मेरे दो बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं हम, और वो दोनों दोस्त बहुत ही जिद्दी हैं, मतलब अड़ के रहते हैं, और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इन दोनों में इतना जिद है, इतना मतलब भर के जिद है कि कई बार कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, और जब मैं ब्रोकर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कहते हैं आगे मीडिएटर साहब, तो मैं उनको कहता हूँ भाई क्या ही रखोगे, और वो कहते हैं नहीं भाई तुम उसको क्यों नहीं बोलते, और उसको बोलता तुम बोलते, उसको क्यों नहीं बोलते। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम चैट भी करते रहते हैं, तो उनकी बातें भी ऐसे चल रही होती है। सिंपल सी चीज है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट पे हमको खाने के लिए मिलना है, जो मेरा एक दोस्त है मान लीजिए उसका नाम ए है और दूसरा दोस्त है उसका नाम बी है, ए बी को कह रहा है भाई कौन से कुजीन खाना है, तो बी कहता है मुझे इटालियन खाना है, ए कहता है मुझे इटालियन पसंद ही नहीं है, तो इस बात पे झगड़ा हो गया। तो मैं कहता हूँ अरे कोई बात नहीं यार, जो मन है वो खाएंगे यार, हम मिल रहे हैं क्योंकि हम आपस से मिलना चाहते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे हमारे जो ग्रुप में मैसेज चल रहा होता है, वो इस तरह के मैसेजेस होते हैं, छोटी छोटी

0: बात पे झगड़ा हो जाता है वो बात कहीं और ही चली जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फिजूल बैठा हूँ, मैंने तुमको बोल दिया मैं काम अभी नहीं कर सकता। वो सामने वाला बोलता मैंने कब बोला कि तुम फिजूल बैठे हो, तुमको लगता मैं फिजूल बैठा हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। और मैं सोच रहा होता कि ये बात तो कहीं और से निकली थी, कहाँ चली गई। तो ऐसे केस में क्या करें जब मुद्दा कुछ और ही है लेकिन अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि वो एक दूसरे पे ही निकलता है।
1: यही अगेन नाउ इसमें ईगो का क्या रूप है, सिद्ध और जिद। ये दोनों ईगो का रूप है।
0: हाँ जी,
1: आप अगर कोई चीज को बहुत ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं या जिद कर रहे हैं, ये ईगो है। जो सिद्ध जिद नहीं करता वो अपनी बात कह देता है, ग्रेस से डिग्निटी से कह करके न्यारा हो जाता है।
0: अच्छा,
1: अब होता क्या है, आप बात के ऊपर आर्ग्यू करना शुरू करते हैं। ईगो मीन्स आर्ग्यूमेंट ओनली। ईगो है ही क्या, दो परसेप्शंस का, दो माइंडसेट का, दो सही का आर्ग्यूमेंट ही तो है ना, और क्या है। जो मुझे सही लगता है, जो आपको सही लगता है, हम आर्ग्यू कर रहे हैं। ईगो हमेशा आर्ग्यूमेंट में जाता है। अब अभी आर्ग्यूमेंट हो रही थी बात के ऊपर, थोड़ी देर के बाद वो बात आपको भूल जाती है और वो आर्ग्यूमेंट बात से चला जाता है अटैक व्यक्ति के ऊपर।
0: बिल्कुल, हाँ वही हो रहा है इस बार तो।
1: आप देखिए कितना सटल होता है, आप अगर रियलाइज नहीं करेंगे ना थोड़ी देर के बाद, जैसे आपने कहा आपको ये भी याद नहीं होता
0: कि मुद्दा क्या था,
1: बात क्या थी, कहाँ से शुरू हुई थी, जो कहते हैं राय का पहाड़ बन जाता
0: बिल्कुल।
1: है। सो ईगो क्या, अपने बात को सिद्ध जिद करना शुरू किया, उससे जाते जाते यू स्टार्ट अटैकिंग द पर्सन। अब आप पर्सन को जब अटैक करते हैं तो आपको लगता है कि वो गलत है, पर्सन गलत है ना, अभी तक तो बात गलत थी, अब पर्सन गलत है। फिर आप पर्सन तक ही नहीं रहते, उसके पास्ट पर भी जाएंगे।
0: पिछली बार भी तुमने ये किया था, हर बार तुम ये करते हो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो। अब मैं यहाँ साइड में बैठ के देख रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है।
1: तो फिर हुआ क्या, एक्चुअली में आप भी हर्ट हो गए, और आपने जो हमने कहा था ईगो हर्ट करती है, आप खुद भी हर्ट हुए, आपने उनको भी हर्ट किया। वहीं पर थोड़ा सा ही तो शिफ्ट लेकर के आना था ना, कि आपको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, आप अपनी जगह से सही हैं, वो अपनी जगह से सही हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, पर हमें इटालियन खाना है वो जरूरी नहीं है, हम वो कर सकते हैं ना, दिस इज सो बेसिक। हम तो बड़ी बड़ी बातों में भी ये चीज आती है, पर जैसे हम हर बार कहते हैं कि संस्कार, अगर छोटी बात में आप उसको चेंज नहीं करते तो आप बड़ी बात में भी नहीं कर सकते।
2: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अच्छा, एक इंसान है जो बंबई में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई के साथ, जो फैमिली में मेरे साथ रहते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी, मैं उनको सॉल्व कैसे करूं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे बड़े भाई को लगता है मैं सही हूं और वो अपनी जो सोल्यूशन है या जो भी डायरेक्शन है वो चाहते हैं कि मैं उसे फॉलो करूँ, तो रिलेशनशिप में देयरफॉर तनाव आ रहा है, मैं क्या करूँ?
2: रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसीलिए होती है, ईगो क्या कहती है, ईगो हमेशा क्या कहती है, मैं राइट हूँ, दूसरे वाला कहता है मैं राइट हूँ।
1: राइट,
2: एक्चुअली में दोनों राइट होते हैं,
1: अपने अपने नजरिए से सही होते हैं,
2: अपने अपने पर्सपेक्टिव से दोनों राइट होते हैं। इसलिए सी, मन में तो बार बार यही चल रहा है ना, मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है, उनके मन में चल रहा है मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है, ये रिश्ता खराब कर रहा है, ये रिश्ता खराब कर रहा है। एक्चुअली हम दोनों अलग अलग हैं, एक सही एक गलत नहीं है। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम अलग अलग हैं, देन वी आर टू अगेंस्ट द प्रॉब्लम। अभी हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम प्रॉब्लम के अगेंस्ट हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं और समझे हम अलग अलग हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं, रिश्ते को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें और फिर एक पर्सपेक्टिव पर फाइनल जीरो डाउन करें, दोनों मिल करके वो जो हम पहले भी कहते थे एक और एक
1: 11
2: हो जाते हैं, तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएं लेकिन प्रॉब्लम के अगेंस्ट जाएं।
1: तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक दूसरे को सॉल्व करने की कोशिश ना करें।
2: मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, थोड़े समय के बाद आपको ये भी याद नहीं होता कि हम किस प्रॉब्लम पर बात कर रहे थे।
1: जी, क्योंकि एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं
2: हम ईगो क्लैशेस होते होते, फिर हम एक दूसरे की कमी पर बात करने लग जाते हैं।
1: तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम

0: भी नहीं सुनते हो तो प्रॉब्लम तो दूर हो गया।
1: और फिर व्यक्ति नहीं, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, तुम जैसे आपने कहा तुम्हारी यही प्रॉब्लम है या जो भी उसकी कमियां हैं, फिर उसके पास्ट पर भी चले जाएंगे।
0: हाँ।
1: आप हमेशा ऐसे करते हो, उस दिन भी आपने ऐसा किया था, क्योंकि अंदर में स्टोर तो सारा ही होता है
0: जी।
1: और फिर यहाँ तक भी कहेंगे सिर्फ आप ऐसा नहीं करते लेकिन आपका सारा
0: हाँ परिवार ऐसा करता है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे, अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे बारे में सब यही सोचते हैं, तो फिर वो बहुत कहीं और ही चला जाता है प्रॉब्लम।
1: प्रॉब्लम तो रह जाती है, प्रॉब्लम राई होती है पर वो पहाड़ बन जाती है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे कॉफी तो स्ट्रांग है ही, म्यूजिक उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, और एनर्जी स्ट्रांग गेस्ट है। अभी फिलहाल तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो, किड्स को स्कूल भेज रहे हो, या ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, या ये सोच रहे हो यार इंडिया में तो अभी शाम होने वाली होगी। बस आज का मॉर्निंग डोज ऑफ मैडनेस एंड मिर्ची स्टार्ट्स हियर। हम बात करने वाले अगले कुछ घंटों में थोड़ी सी बॉलीवुड की, थोड़ी देश और दुनिया की, थोड़ी सी इंटरनेशनल बातें, थोड़ी सी अपनी जिंदगी की, और थोड़ी सी बीच बीच में रैंडम बातें भी करने वाले। लेकिन साथ में होने वाला है मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स योर्स ट्रूली, बोले तो मैं यानी कि प्रिसिला। सो अभी वॉल्यूम अप, चाय या कॉफी रेडी रखो, मिर्ची मॉर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तुम्हारी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है मैंने, और थोड़ी सी देर में एक कॉन्टेस्ट के बारे में भी बात करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम कैसे जीत सकते हो कुछ अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
1: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
0: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
0: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And let's rewind the clock and find out कि आज के दिन पहले के सालों में क्या क्या हुआ था. 1914 में न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर द सन स्टार्टेड पब्लिशिंग द फेमस ग्रेट मून होक्स, एक फिक्शनल स्टोरी क्लेमिंग देयर वाज लाइफ ऑन द मून. 1916 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साइंड द एक्ट दैट क्रिएटेड द नेशनल पार्क सर्विसेज, अमेरिका के ब्यूटीफुल नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. 1944 में पेरिस वॉज लिबरेटेड फ्रॉम 4 years ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन बाय एलाइड फोर्सेज एंड द फ्रेंच रेजिस्टेंस, अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड वॉर टू. एंड 2012 में नासाज वॉयजर 1 एंटर्ड इंटरस्टेलर स्पेस, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू डू सो. एंड बिफोर यू हेड आउट, मिर्ची करेगा बंधन पूरा, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो. रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन और भी मीठा बना रहा है नानक फूड्स, bringing sweetness to your life. This contest is brought to you by Nanak Foods. Register karne ke liye rakhi type karke WhatsApp par bhejo abhi ke abhi. Number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. And saath mein bhejna apna pura naam and wait for our call. Also, you can DM me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, on Instagram and X. And this is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, jahan par festive special offers chal rahe on 22 carat gold and diamond jewelry, not to be missed. Visit viranijewelers.com. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Coming up, Mirchi Dar Bangers only for you. Stay tuned and stay hot.

0: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
2: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
3: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव में जोड़ायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आप सुनने वाले काफी इंपॉर्टेंट अपडेट।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची लिसनर्स, दिस इज जेसन दोशी फ्रॉम एसडी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसडीसीएफ Mortgage market update. Treasury Secretary Bessent has been a lot in the news lately. Last week, he announced a bond buying program, which he hoped would lower mortgage rates, but unfortunately didn't. Now, he's set to announce economic sanctions on Iran, and we're keeping a close eye on this news. But listen, folks, don't get too caught up in trying to predict every rate movement. If the home and payment make sense today, you can always look at refinancing later if rates improve. And even ask us about our introductory rates, which are up to 1% below the current market rate. Call me today at 732-429-4050 and ask about these introductory promotional rates. Again, call me directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. This is Jason Doshi with your SDCF Mortgage Market Update. Welcome home.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिव मॉर्गेज अपडेट। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची ब्रिज, दैट इज MIRCHIBRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑन।
0: दिस मॉर्गेज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय एसडी कैपिटल फंडिंग।

0: छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग First time home buyers also offering zero closing cost refinance option. For more information call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
9: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le Peter, ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
9: Moral of the story, number one, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब चेक करते हैं आज का वेदर का हाल चाल क्या है, बिकॉज यार हम देसीज के लिए वेदर फोकस्ट का मतलब है कि आज पहन कर क्या जाना है। राइट नाउ वी आर एट 61 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स सनी एंड इट फील्स अ लिटिल बिट वार्मर अराउंड 64 डिग्रीज फारेनहाइट। सो मदर नेचर आज कह रही है टेम्परेचर कुछ और है, वाइब कुछ और है। आफ्टरनून में अराउंड नून पार्टली क्लाउडी स्काई इज एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल टुडेज टेम्परेचर विल रेंज फ्रॉम 59 degrees to 80 degrees Fahrenheit with the feels like range around 60 to 81 degrees Fahrenheit. और हाँ, कल के comparison में pretty much the same story. Yesterday was 60 to 80 degrees Fahrenheit और आज है 59 to 80 degrees Fahrenheit. So weather department में कोई change नहीं हुआ है, pretty much like सरकारी दफ्तर। Good news though ये है कि आज अगर तुम बाहर जाने का plan कर रहे हो, बड़ा ही elaborate hair style बनाने का plan कर रहे हो, तो जैसे last 24 hours में 0 millimeters का precipitation था, अगले 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड है। यानी कि अम्ब्रेला को आज इमोशनल सपोर्ट के लिए घर में ही छोड़कर जाया जा सकता है। एंड रिमेम्बर फील्स लाइक टेम्परेचर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, तो बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनकर जाना जरूरी है। साथ में अपना वाटर कैरी करो, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर एसपीएफ 50 प्लस, बिकॉज सन प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और उस सन से अब इस सन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सन बोले तो तुम्हारे मम्मी पापा का सन, यानी कि तुम्हारा भाई, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता है रक्षाबंधन पर। और रक्षाबंधन इज राइट अराउंड द कॉर्नर, और इसलिए कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर जिसका नाम है नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। बस करना तुम्हें यह है कि व्हाट्सएप करना है राखी RAKHI और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर, एंड अपना पूरा नाम साथ में लिखकर भेजना। या फिर तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर राखी के साथ साथ अपना पूरा नाम और फोन नंबर भी लिखकर भेजना। कॉन्टेस्ट इज इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहाँ पर फेस्टिवल स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन विजिट करने के लिए वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर विजिट करो और ये अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स बिल्कुल मिस मत करो। और अभी मिस मत करना, मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले हैं। Only on Mirchi Mornings, मेरा नाम है प्रिसिला, stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब अराउंड द वर्ल्ड के अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने मेन में एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान

दौरान कनाडा को स्टेट कह दिया, फिर इमीडिएटली खुद को करेक्ट भी किया और करेक्ट करते हुए कहा सॉरी फ्रूडियन स्लिप, एंड फिर एड किया दैट वॉज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। नाउ इट वाज अ प्लान्ड जॉइंट एम्फिबियस लैंडिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया हैज बीन कैंसल्ड विद सोल्स मरीन कोर साइटिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस फोर्सेस लिंक्ड टू द ईरान वॉर। द एलाइज आर रिपोर्टेडली डिस्कसिंग वेदर द ड्रिल्स कैन रिज्यूम। And lastly, Bloomberg reports Apple is planning a new Mac Mini, potentially ahead of its September event. The company has reportedly tested versions with M5 and M6 chips, though it's not clear which one will make the final cut. Mac Mini is releasing after almost 2 years. And मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। This was Mirchi Hour का 3। मुझसे कनेक्ट करो Insta और X पर। मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। WhatsApp का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
0: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
0: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
3: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
4: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
6: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
7: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
3: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ 1 ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
15: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
14: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
15: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islip.
16: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
17: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
18: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.3. 102.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available.

मतलब कि इंडिया में रिलेशनशिप स्टेटस इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवर. सो लेसन ऑफ द डे है, प्यार करो, पीडीए करो, लिपस्टिक भी लगाओ, लेकिन ये सब इंडिया में नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कार के ऊपर, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी फर्स्ट, रोमांस लेटर है. And speaking of something romantic, diamond से romantic क्या हो सकता है? Tanishq presents Festival of Diamonds, जो कि फिलहाल चल रहा है, जहां पर तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है डायमंड की वैल्यू पर और मेकिंग चार्जेस पर. साथ साथ में पता है, पुराना गोल्ड अगर वहां पर लेकर जाओगे जो कि 18 कैरेट से अबव है, तो वो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिलने वाला है. अमेजिंग ऑफर है, फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. और अभी किसिस तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स प्ले कर सकती हूँ राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
1: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर योर मिर्ची मॉर्निंग्स बर्थडे क्लब अनाउंसमेंट। ये आज के बर्थडे बेबी, जरा अटेंडेंस तो लगाओ यार, बिकॉज आज तुम्हारा बर्थडे स्क्वाड काफी स्टार स्टडेड है। सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे जस्ट लाइक यू आर ब्लेक लाइवली, द गॉसिप गर्ल स्टार, फिल्म मेकर टिम बर्टन, द मैन बिहाइंड बीटलजूस, रॉक लेजेंड एल्विस कोस्टेलो, एंड कंट्री सिंगर बिली रे साइरस, जो कि माइली साइरस के पप्पा जी हैं। किस फ्रंटमैन जीन सिमन्स एंड एक्ट्रेस रेचल बिल्सन, और एक्टर्स के बर्थडे गैंग में और भी लोग शामिल हैं, क्लोडिया शिफर हु इज अ सुपर मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनेयर, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड नोन फॉर ट्रू ब्लड एंड बिग लिटिल लाइज, एंड एक्टर ब्लेयर अंडरवुड, एंड वी ऑल्सो रिमेम्बर द ट्रू स्क्रीन लेजेंड टुडे, शॉन कॉनरी द लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हुई मार्क टुडे। एंड अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, रिमेम्बर यार केक की कैलोरीज तो आज काउंट करती नहीं है, बर्थडे है बॉस, साइंस भी छुट्टी पर चले जाता है, तो धूम मचाओ बर्थडे पर, खाओ पियो ऐश करो, और अपने शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो तुम राइट नाउ, अपने लिए, किसी फ्रेंड के लिए। एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है, जहां पर तुम फैबुलस गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकते हो कर्सी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, यम। सिंपल सा काम करना है, राखी टाइप करके व्हाट्सएप करना है 9033647244 पर राइट नाउ, along with your full name, and register karo and then wait for my call. And you can also DM me, Mirchi Pris is my handle name on Instagram, that is MIRCHIPRIS, and this contest is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, with festive special offers going on there, 22 carat gold and diamond jewelry par. Online visit karna hai to viranijewelers.com is the site. Main hoon Prisala tumhare saath mein, wishing all the birthday stars a very very happy birthday, and aane wale hai marchidar bangers just for you, stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
6: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
6: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izalin.
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. सुन रहे थे Mirchi Mornings और अब सुनने वाले हो Gold Car latest rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 per troy ounce gold के price trade कर रहे हैं. Silver also trending higher at $65. $65 per troy ounce आज silver trade कर रही है. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई आउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहे हैं. दिवाली, पुष्य नक्षत्र, इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com पे, जहां पे 0% इंटरेस्ट पे, जीरो फाइनेंसिंग, जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं RajJewels.com की टीम को. कैसे? आइए लाइफ के प्रेशियस पल सेलिब्रेट करें एट RajJewels.com. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन Mirchi Mornings विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris और व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय Raj Jewels, किंगडम ऑफ ज्वेलर्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3। यहाँ पर तुम्हें खबरें मिलती हैं अराउंड द वर्ल्ड से। सबसे पहले, द यूएस हैज सैंक्शन्ड 4 इंडियन कंपनीज ओवर अलेज्ड इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। द कंपनीज नेम्ड आर पोर्टीज पार्टनर्स सदाशिवा ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक एंड प्राकृतिज इंफ्रा इम्पैक्ट्स। द ब्रॉडर गोल हियर इज रिस्ट्रिक्टिंग पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्सेज फॉर ईरान। नंबर 2 पर, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान कुड क्रिएट चैलेंजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग बासमती राइस, टी एंड फार्मास्यूटिकल्स। India shipped around $383 million worth of rice to Iran in the first half of 2020.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet vala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello. Anshika, ye Anshika, aapka ye प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए,
4: इसका नाम क्या है?
3: संतोष. संतोष
2: संतोष
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं कोई बात नहीं.
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए. मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? आई एम एंट्रोनर नहीं आई एम एम्प्रोटोनर एम्प्रोटोनर

0: दुकान है मैडम कपड़े की अपनी दुकान है। अंशिका दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: भैया मेरे राखी के,
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
16: देसी खाना,
17: देसी शॉपिंग,
16: देसी कल्चर
17: और देसी एंटरटेनमेंट,
16: बस एक ही डेस्टिनेशन,
17: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
18: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Rashi's Own Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi's Own.
1: लिब्रा यानी ठुला राशि आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है। गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन। बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना। हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू। लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो। ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लकी कलर इज बर्गंडी। लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है। प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है। लकी कलर इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है। वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, सो स्टेप अप बॉस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन। डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं। रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 31। पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कंप्लीटली क्लोज मत करो। लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। लकी कलर इज सी फोम ग्रीन। लकी नंबर इज 8। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Koi bhi din tyohar ho, uski shuruaat to muh meetha karwane se hi hoti hai. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कहना दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो कराओ मुंह मीठा, नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
2: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ। આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં 14 સપ્ટેમ્બર સોમવારે સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન। વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 7323578200। જય ગુરુદેવ।
11: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। It's 10:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
11: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Rashi's Own Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi's Own.
1: Libra यानी ठुला राशि आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है. गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन. बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना. हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो. ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो. ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 27. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है. प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 5. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है. वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है. सो स्टेप अप बॉस. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 16. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं. एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन, डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं. रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 31. पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल. अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कंप्लीटली क्लोज मत करो. लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो. लकी कलर इज सी फोम ग्रीन. लकी नंबर इज 8. एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
6: EKG and phlebotomy,
5: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, Mirchi Mornings has come to an end. Mera naam hai Priscilla. And before I let you go back to your morning madness, ek story jo genuinely mujhe smile dekar gayi hai, wo batati hu tumhe. China mein World Humanoid Robot Games mein ex-humanoid ka Tien Kung Omni naam ka robot 400 meter race jeet gaya. लेकिन एक फनी पार्ट भी है इसमें. इसको शाय रोबोट बोला जा रहा है बिकॉज रेस के दौरान ये अपने आर्म्स ऊपर करके लिटरली फेस को कवर कर रहा था. और मेकर्स के अकॉर्डिंग रोबोट ने खुद सीखा कि इस पोस्चर में रनिंग उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है. मतलब कि हम ह्यूमंस आई नीड टू वर्क ऑन माय कॉन्फिडेंस तो बोलते हैं, और रोबोट्स जो है वो हमें कॉपी करते करते थोड़ा कंफर्टेबल रनिंग के लिए ये कर रहे हैं. ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, कल को रोबोट हमसे बोलेगा सॉरी यार कैमरा ऑन नहीं कर सकता बिकॉज मुझे सोशल एंग्जाइटी है. और जाते जाते मेरी तरफ से एक और रिमाइंडर, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए. रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो एंड विन करो गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. रजिस्टर करो बहुत ही इजिली, व्हाट्सएप पर राखी टाइप करके भेजो एंड सेंड इट विथ योर फुल नेम टू 9033 मिर्ची.

इट्स 9033647244। या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद ईरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन विजिट करने के लिए ईरानी ज्वेलर्स.com इज द साइट। एंड अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La firma la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: Hanji.
3: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं,
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब अच्छी क्वालिटी के,
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दीजिए आपको।

0: क्या क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
1: यार, बढ़िया क्वालिटी के दिए। 50 लोग आते हैं, लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
0: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
1: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
0: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा। पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा।
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा।
0: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: तू कहाँ पे है? तू
0: बैंक में।
1: अब तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
0: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
1: है?
0: अपने हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
0: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर। तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो,
0: ठीक है? मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
2: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
4: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
7: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
6: I am not going to bed with you ever again.
5: But why? What did I do?
6: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
5: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
6: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
5: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
6: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
7: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी। Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy और
12: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yep, Pajak.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे, पड़ोसियों की गाड़ी भी कहाँ तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले, आपको तो भूल ही गए। इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
10: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
12: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

पुरानी जीन्स पर। हाय, मैं हूँ श्रेया, और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, बहुत ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
3: हाँ जी,
4: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए,
5: इसका नाम क्या है?
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं, कोई बात
4: नहीं। तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
4: डू? I am an entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: भैया मेरे राखी के।
7: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: ओ दलजीत दोसांझ,
10: पाजी आप क्या लेने आए हो?
9: शुद्ध देसी घी।
10: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
9: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते, घी सेहत के लिए खाते। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा,
10: नानक घी।

0: जी नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
1: फूड
2: यस,
1: शॉपिंग
2: यस,
1: एंटरटेनमेंट
2: डबल यस,
1: और हेल्थ फेयर
2: ऑफ कोर्स सब कुछ एक ही जगह इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th श्री कृष्ण मंदिर मॉडर्नविल।
3: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
4: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हमें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
10: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो।

0: Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। सो यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: भैया मेरे राखी के।
3: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में 13 ईयर्स में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में, है ना? पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? हाँ, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुनकर के वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।

0: ये कमलेश जी,
1: हाँ जी कौन?
0: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये
1: हाँ बताओ।
0: आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
0: नहीं,
1: ये
0: देखिए,
1: क्या
0: एक तो
1: कहते
0: मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: हैं? अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते
0: नहीं,
1: हैं, कभी
0: देखिए,
1: कैश की
0: मैंने
1: सिलाई,
0: हमेशा कब लिए
1: कभी
0: आपसे?
1: कभी
0: हमारे
1: जिम में
0: नहीं,
1: कुछ
0: हमने
1: पैसे।
0: कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
0: भाई
1: अब
0: साहब,
1: हर
0: एक
1: छोटे
0: बात
1: से तुम
0: बताओ,
1: थोड़े ना
0: आपके
1: पैसे
0: पास
1: मांगते
0: साढ़े
1: रहोगे।
0: सात सौ रुपये क्या बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे
1: अरे
0: हो?
1: 750 रुपये मैं थोड़ी ना हर किसी के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
0: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
0: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
2: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time, just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: Yes,
2: with us?
1: yes, yes, madam, I am there. I understand. मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount? क्या
2: Sir, it's
1: कितना
2: just 750
1: कितना
2: rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead
1: No.
2: with this?
1: No, not an issue, not an issue. 750 only?
2: Yes, sir, absolutely.
0: ना 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गिरेज में बढ़ गई।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: भैया मेरे राखी के।
5: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स।
6: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षा बंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: सिमरन, तू कार चढ़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे टाइम नहीं दे सकिया।
11: नहीं राज, अपने विच पहला वर्कआउट कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इतने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
10: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साढ़े व्याह तो पहला सी।
11: राज
10: सिमरन,
12: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान सुन करके यहीं वापस

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
9: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: Radio Mirchi, it's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता क्या थी, अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क

0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
3: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: जयदीप।
3: हाँ जी।
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
3: हाँ जी।
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के।
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे।
4: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
3: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
4: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
3: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
4: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
4: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही।
3: तो कहाँ पे है तू?
4: बैंक में।
3: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
3: है?
4: अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
4: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
3: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
4: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: ये पटाख।
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
8: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी, जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वाज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स,
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry.

तो अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है।

जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: ये कमलेश जी।
1: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
3: I want to talk to you. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yep, hot.
0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
10: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
14: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षा बंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com।

0: www.mrs.mrs.com or visit your local grocery store.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और राखी का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है और इस बार सेलिब्रेशंस के साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि इस रक्षाबंधन सिर्फ रिश्तों की मिठास ही नहीं एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर जीतने का मौका भी आपका इंतजार कर रहे हैं थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत ही आसान है, आपको टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है 9033647244 या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi siddhi। सिर्फ एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की रेस में शामिल। और जी हाँ, राखी की शॉपिंग का प्लान हो रहा है तो विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी जरूर विजिट कीजिए। वहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। डिटेल्स के लिए जरूर जाइए viranijewelers.com पर। तो इस राखी मिठास भी, शॉपिंग भी और एक्साइटिंग प्राइजेस भी, क्योंकि इस बार नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। आज ही रजिस्टर कीजिए और अब इस फेस्टिव वाइब को म्यूजिक के

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा. शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से. जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट. लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था. इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था. और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था. तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है. तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है. और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान. तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: या फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
4: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
3: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
4: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
3: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो या वो स्ट्रेसफुल मोमेंट जब किसी अपने के रिपोर्ट्स का वेट हो, उस वक्त एक काम वॉइस, एक केयरिंग नर्स या फिर एक हेल्पफुल टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता, एक रीअश्योरेंस लगता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ आप भी किसी के हेल्प का रीज़न, किसी के राहत का रीज़न बन सकते हो, तो आज ही कॉल कीजिए एम्स एजुकेशन को, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's go on donkey, have a funky time.
2: रामायणा का ट्रेलर तो रिलीज हुआ और उसे देखते हुए ना एक थॉट जरूर आया। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, हमारे एपिक्स में ना राजा और रानियों की दुनिया कितनी ग्रैंड इमेजिन हुई है। मतलब वो महल, कॉस्ट्यूम्स, रॉयल दरबार और स्पेशली उनकी ज्वेलरी, क्राउन से लेकर नेकलेसेस, इयररिंग्स और वो इंटीग्रेट डिटेलिंग तक, स्क्रीन पर वो रॉयल लुक देखो ना तो नज़र नेचुरली वही चली जाती है। और तब रियलाइज होता है कि ज्वेलरी हमारी स्टोरीज में सिर्फ सजने के लिए नहीं थी, सदियों से ग्रैंडियर और रॉयल एलिगेंस का एक हिस्सा थी। और अब वैसे महल और दरबार भले ही आज की दुनिया में ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा रॉयल एलिगेंस अपने लुक में लाना आज भी पॉसिबल है। और इसी रॉयल मूड में तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अपने रियल लाइफ रॉयल मोमेंट्स में तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ थोड़ी सी ग्रैंडियोस जरूर ऐड कीजिए। आज ही विजिट कीजिए तनिष्क स्टोर एट 1429 ओक्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, एपिक की दुनिया के राजा और महारानियों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा है जरूर बताना। DM me on Insta @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सिनेमेटिक ग्रैंडियर को कंटिन्यू करते हुए ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virva la burga. Mirci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Anshika? ये अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। संतोष
2: संतोष
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स।
7: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
8: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षा बंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
14: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
15: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
16: श्याम शारदा, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
17: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
18: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ गुड डे एट वर्क।
0: rain-free day, and today the U.S. market's flat, but mortgage rates got better. For most people, owning a home is like moving a step up the American dream ladder. It is indeed wise of you to buy a home instead of continuing to pay hefty rent. Your home is an excellent investment in the long run because it helps you not only build up an equity, but also garner substantial tax breaks. So friends, buying your dream home, advice is free, pre-approval is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed 6.25%, 20-year fixed 6.125%, 15-year fixed 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It's lionmtg.com. Also, I always tell homeowners, don't refinance because you heard rates have dropped. Refinance because the numbers make sense for you. We look at your current rate, your new potential rate, closing costs, how long you plan to stay in the home, your equity, and your monthly savings. Then we calculate the break-even point. If the savings and long-term benefits outweigh the cost, that's when refinancing becomes a conversation worth having. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. Again, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Thank you.
18: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
19: New York mein lambi lambi buildings hoti hai na? Plane se dekha tha.
20: Shashi, wo Manhattan hai.
19: Manhattan.
21: Man, as me, hat, topi, or mom, what's tan in Hindi?
20: Tan matlab wo dhoop ki chhaap.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
8: नो
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर।

0: sector providing top-notch services by ASE certified technicians. Visit Raj Auto Center at 1400 Jersey Avenue, North Brunswick Township, 1213 New Jersey 27, Somerset. Auto Body Shop, 700 Harris Ave, Middlesex. If you're with Raj Auto Center, you're in good hands.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
6: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: झुमका।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो

0: जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा फ्रॉम किंग खान एंड वन एंड ओनली जय हनी सिंह।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची का।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सोचा है हमारे लाइफ में नोटिफिकेशंस कितनी सारी होती है? शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और दिन भर की नोटिफिकेशन जैसे कि योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। यार रोज इतनी नोटिफिकेशंस आती है कि कभी कभी दिल करता है कि एक नोटिफिकेशन ऐसी भी आए जैसे कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ

वैसे वो नोटिफिकेशन शायद इतनी दूर भी नहीं, बिकॉज इस रक्षाबंधन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। यानी इस रक्षाबंधन एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर्स जीतने का मौका आपका इंतजार कर रहा है थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ एंड विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन 24 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको करना है बस आसान सा काम, टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @rjmirchisiddhi, और हो सकता है अगली नोटिफिकेशन आपके चेहरे पे स्माइल आए क्योंकि शायद वो कहे कि कंग्रेचुलेशंस यू आर द विनर। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए इन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। अब देखते हैं ये जो अगला गाना है वो आपके चेहरे पे कितनी स्माइल लाती है। तो सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nici.
1: Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burga, burga. La vieta la burga. Nici, burga.
2: Alo.
3: Alo.
2: Alo.
3: Jadip.
2: Haan ji.
3: Ye भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेगा?
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है अभी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि ले सर ले जाओ बढ़िया।

0: टिकट दे रहा हूँ, पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
1: तो कहाँ पे है तू?
0: बैंक में।
1: अब तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
0: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
1: है?
0: अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
0: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर। तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
0: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
3: भैया मेरे राखी के।
4: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स। Inefficient,
5: very complex,
6: clumsy hoy,
7: confusion hi confusion.
4: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao, apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Kya banaye aaj? Shahi paneer banaye, kadai paneer banaye, matar paneer banaye ya fry paneer banaye? Agar aapke paas nanak paneer hai, to aap kuch bhi bana sakte hain. Aankhon mein chamak aur chehre pe noor, sirf beauty parlor jaane se nahi aata. उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।
17: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
4: वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार अगस्त 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट, न्यू जर्सी। इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन। तो इवेंट का कैनवस बहुत ही

ग्रैंड रहने वाला है, तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम सुलेखा.com या फिर saiusainc.com। और अब बारी आती है आपकी किस्मत की, क्योंकि मिर्ची लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट के टिकट्स जीतने का मौका है। तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर्क के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब, और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूं कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: भैया मेरे राखी के
5: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
13: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
17: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
16: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डिलिबरेटली बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो

को, शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
4: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
5: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
4: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
5: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हां, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो ये है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6-पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक आर आईज ऑफ। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द डिस्को राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar,
1: let's do not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: It's hot.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: सिमरन, तू कार छड़ के किधर जा सक रही है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकया।
12: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
11: हाँ।
12: की?
11: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ, नानक रसमलाई दा टेस्ट अज भी ओही है जो साडे विआह तों पहला सी।
12: राज
11: सिमरन,
13: नानक ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रीयूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेपी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाय

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
6: जय गुरुदेव। अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेशजीना आगमननी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटरना गणेश उत्सवमां जोडायो, जेमां 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज

0: Berlin.
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Ital Mode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Ital Mode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Ital Mode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Batting to काफी सारे करते हैं. विराट एक ही होता है.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
11: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

एक ही आर्टिस्ट पहले आपको इमोशनल भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे, यार ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंगदा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्सचर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मजा ही अलग होता है। एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विद एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है। आपको बताना है एमी विर्क का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर्क टाइप कीजिए और मुझे डीएम कीजिए @rjmirchisiddhi, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्राइड्स चॉइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
3: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: मिर्ची रोशी
0: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी. इट्स हॉट.